찬 प्रभु धन्यवाद। जिंदगी मन को ती का मन को बंदगी एक दुई तीन चार पाँच।